एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइट्स गुड।

0: Worldlingo festivity offer. अब पाउन होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्तहरु लागू हुने छन्। छिटो बनेकै Worldlink।
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

0: समीची हूँ चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी विषय मुई खातर खाई हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
2: आंगी समीजो लोटी पढ़ती हूँ छामता ही गुदी
1: बढ़ती आ बढ़ती बा लोटर खाले पढ़ती बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बाइबल खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आ रही सुमी बैंक आप ही बने आ रही
3: सतर्कता ना छाती से क्या बचना
2: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
5: बीए त आटियो बाबू गरगहना को लागि पो कहाँ जाने होला
6: गहना चाहिँ एकदम राम्रो अनि आधुनिक डिजाइन को बनाउनु पर्छ है दाई
7: दाजु भाइको केको गफगाफ हुँदै छ
5: के हुनु नि बीए त आटियो गरगहना को लागि कता जाने होला भनेको नि बहिनी
7: ल त्यसको लागि त चिन्तै लिन पर्दैन नि

वर्ल्डलिंक को फेस्टिविटी ऑफर अब पाउंड हाउस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र ₹1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छन् छिटो बने गई वर्ल्डलिंक।

एसेंशियल्स एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

0: सम्पर्क नम्बर 9827702042 9742582000।
1: समिति हो चौदह के में बोधे लोटी पर दीरो बैंगे ने विवरण पी विषय मुई खातर खाई हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
3: आंगी समिति हो लोटी पर दियो छामताई को दी
2: बढ़ दी आ बढ़ दिवा लोटर खाली पर दिम बा सहीली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बायबर खाने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिल खबर बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
4: सतर्कता ठग दिवे क्या बचेना
5: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हितरी जारी संदेश
6: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
7: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.